0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: बजे बजे चाकुटे रेडियो ये बरी तो भाई मैं भेजो रेडियो रे रेडियो मर्चंग दिनी तमु केरी समाचार खल खाई बो
1: हम जिन्हें हम ये वो जमले हम ये चलो जी भेजो
0: इबर थाली बते सेवा ग्रही मरकरी नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य रे लोकजुम द कहले आरक्षण कोटर बे केंद्रीय सदस्य में उम्मीदवार भी बरी प्लूले जाना नेता में
2: के मैं रेडियो मर्चंग द कहले दिन नानर बे आठ बजे खबर तमु के समाचार ये बरी आमलेत ओ

छ्याजलो रेडियो मर्चङदी 95 मेगाहर्जले इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्चङदी .org नाना 8 बजे खबर तमुखे मर्चङदी फेतेरी खुसीमाया तमुसोला तेवा म ऐश्वर्य क्रबे फेतेरी

एक वर्षरी अझा सौलो दुई सय तिहत्तर खेदोरी कृत्रिम गर्भधानलाई म प्रभावित क्षेत्र क्या बने भई लागि नासथे मेसी पितलो मर्सिङदी ए जल विद्युत आयोजना दि ध्यान आकर्षण लमी मु ते लमजुङ्गरी फेरी टी खब खेदोमय पीड़ितमय लागि दस लाख अन्ठाउन्न हजार रूपियाँ मई राहत पिम लमजुङ्गरी कृषि वर्षी न अवधिले तीन हजार भन्दा बढ़ी खेतोरी कृत्रिम गर्भधारणलाई म भेटनरी अस्पताल लिएर पशु सेवा कार्यालय लमजुङ्गाई अनुसार यब आर्थिक वर्ष बयासी तिरासी म्यादेरा मैरी लैमरी तीन हजार दुई सय तिहत्तर खेतोरी कृत्रिम गर्भधारणलाई म जिल्ला मोबा पशु सेवा कार्यालय दिएर जिल्ला विभिन्न नास तह दिएर निजी क्लिनिक र क्या खेतोरी कृत्रिम गर्भधारण सेवा कि म कार्यालय अनुसार यब वर्षरी एक हजार आठ सय छब्बीस मैदे र एक हजार चार सय सड़चालिस खेदो मियादी कृत्रिम गर्भधारणलाई म जिल्ला मुम्बा भेटरिनरी अस्पताल दिएर पशु सेवा केन्द्र दिया पैंतिसवटा मियादी र अड़चालिसवटा मैरीलाई मरी तिरासीवटा खेतोरी कृत्रिम गर्भधारण सेवा पिसिम विषय नासा तह दिएर प्राइभेट क्लिनिक दिया एक हजार चार सय बाह्र म्यादेर एक हजार सात सय अठहत्तर मैले तीन हजार एक सय नब्बे पशुरी कृत्रिम गर्भधारणलाई म लमजुङ्गी मर्सङ्गी नासापालिका मुभा तागरिङ खेर मुदेर बाउन्डर फ्रेसी मिजी फितलो मर्सङ्गी जलविद्युत आयोजना कार्यक्षेत्र रिपोर्टिभ क्या तोखबै लागि मर्मत लमीभरि मागलाई मरी ध्यान आकर्षण लमी म फ्रेसिङ नासथेमी फ्रेसिमेजी फितलो मर्सङ्गी जलविद्युत आयोजना सरकार दिएर समन्वय समिति रूपे अध्यक्षता क्या आयोजना व्यवस्थापन दि ज्ञापन पत्र पिमारी बेसर चामी क्या नुर्वे आयोजना प्रभाव क्षेत्र रि क्या बनिमिभए लागि ध्यान आकर्षण लमी म ज्ञापन पत्र रि क्याइना अवस्थाइन कारण नास्थेमे ज यात्रुमे दिन क्या चातभरी गाह्रो तभा बिम नायु भए समयभरि अझै क्या नयाँ भए तैभरि दुर्घटना जोखिम समेत बढ्दिसी या भए बिम लमजुङ्गरी आर्थिक वर्ष बयासी तिरासी ठेर भए खेत त क्या पीड़ित मैले दस लाख अन्ठाउन्न हजार रूपियाँ साथ मई चोरी म डिभिजन वन कार्यालय लमजुङ्गी जिल्ला मुभा विभिन्न थ्योरी थेर्वे खेतो इन आक्रमण क्या मिलेर खेदो मैले तबा क्षेत्री दिए कानूनी व्यवस्था अनुसार मई राहत सिफारिश लमी म यब आर्थिक वर्षले जिल्लारे एउटाजना मिलेर एक सय एकाउन्नवटा खेदोरी फेरबी खेदोजी आक्रमण लैमरी क्षति तयाब डिभिजन वन कार्यालय तथ्याङ्क मु खेदोमै न आक्रमण त क्या तीर नभए खेदोमै क्षति तयाबा दिसो प्रक्रिया पूरा लैमरी राहत पिङ खबरी जम्मा दस लाख अन्ठाउन्न हजार आठ सय पाँच रूपियाँ राहत मु चुबा कार्यालय प्रमुख दीपक पण्डितजी बिमु यब आर्थिक वर्षले भालुजी आक्रमण लैमरी घाइते तयाबा यौलो जानदे कार्यालय दे कार्यालयजी राहत मुई उपलब्ध समेत लमी मु चुब बाहेक कार्यालय क्या पाँच लाख आठ हजार रूपियाँ मुई अझ चुबा बाँकी मु कार्यालय साउन पन्ध्र गते त क्या डिमार खातैन वार्षिक शुल्क आफू विषय खाता रोका लमी भीम सीडीएस एण्ड क्लियरिङ जी सार्वजनिक सूचना जारी लैमरी पन्ध्र गते नोरी वासिसुला आफै विषय डिमार खाता सोह्र गते त क्या रोग दिमीवा व्यवस्था लभ सिस्टम रि लैबा बिम डिमार खाता तयार बन्द तयार लिसो सेयर कारोबार लायो त म हरेक वर्ष असार मसन्त नोरी फ्युल परिवार चु वार्षिक शुल्क चु पटक साउनै नाम मध्यम समय थप लैमु हरेक वर्ष डिमार खाता त मुझे एक सय रूपियाँ मुई फोल परिम विषय डिमार खाता न संख्या त हो अस्सी लाख नौ हजार छ सय तेइसजना थोरी म चु म दिदी मेरो सेयर नलागे पचास रूपियाँ मुई फोल परिम विषय चु मुई फोबै लागे सीडीएससीजी आग्रह समितलाई म सीडीएससीसी थिएन अनुसार मेरो सेयर सक्रिय खाताले तोखो विषय संख्या एकाउन्न लाख अडचालिस हजार आठ सय चौरानब्बे थनी म अनलाइन प्रणालीका यो आईपीओ दिएर एफपीओ हक प्रदायक सेयर भरिदिने हो वा मेरो सेयर भरिदिवै लागि मेरो सेयर तिनीसम्म प्रयोगलाई खाइ म
यबा आर्थिक वर्ष रे 82-83 नेपाल जितोको समय पहिले तही भन्दैले अनैछि चुइम भन्सार कार्यालय कागज भेट्टैन अनुसार यबा आर्थिक वर्ष रि 12 अरब 63 करोड़ रूपियाँ बराबर 63,85,870 किलो अलैची चुइम चु अलैची चुनबा औसुभ वर्ष रि तुलना रि 4 अरब 96 करोड़ रूपियाँ मुई बढ़ी हो। तारखबा आर्थिक वर्ष 81-82,42,594,550 किलो अलैची चुलो विषय छापर काँकड़ भिटा तैमरी बाहिर फपा अलैची न मूल्य दिएर परिमाण हिसाब तोखो समय तै भन्द लेम अलैची व्यवसाय महासंघ अध्यक्ष दीपक नेपालीजी बेम मर्सन जी फेरि तखोबे लागे छ गयो फेरि छेउ भन्दा वैसो कर्ब फेरि फेरि तिखे लम्जुङ्गरी करिब वर्ष 3273 खेतोरी कृत्रिम गर्भधारण प्रभावित क्षेत्र क्या बनिमे भई लागे नासथेमेजी फितल मसङ्गे जल विद्युत आयोजना ध्यान आकर्षण दे लम्जुङ्गरी फेब खेत ख्या पीड़ित मई लागि 10,58,000 रूपियाँ मई राहत भीम नानर खबर तमुके मर्संगे फेटे तखोबे लागे छिजी प्राविधिक थु दिपेश थे धन्यवाद पिमारी फेटे क्या खुशी भाई तमेश्वर विदा किमो रेडियो मर्संगे 95 MHz दे इंटरनेट अनलाइन रेडियो मर्संगे .org हेरिम दिलत ओ छ्याजलो।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: मुटु छाती एवं श्वास प्रश्वास का बिरामी का लागि खुशीको खबर।
1: मुटु रोग का बिरामी अब लमजुङ बाहिर जानु पर्दैन। मुटु को भिडियो जाँच अब सेवा मोडल हस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड मा।
0: पुरानो मेडिकल कलेज चितवन का वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर मनोज श्रेष्ठ सेवा मोडल हस्पिटल मा आउनु हुने हुँदा मुटु श्वास प्रश्वास ब्लड प्रेसर का समस्या भएका बिरामीहरूले स्वास्थ्य जाँच गराउनु भई समयमा नै ढुक्क हुनुहोस्। साथै सोही दिन मुटु को भिडियो जाँच इकोकार्डियोग्राफी सेवा पनि उपलब्ध छ। साथै सेवा मोडल हस्पिटल का सम्पूर्ण सेवाहरू पनि सुचारू हुनेछ।
2: जाँच हुने दिन र समय यही साउन 16 गते शनिबार का दिन बिहान 9 बजेबाट।
0: स्थान सेवा मोडल हस्पिटल प्राली सानिमा बैंक अगाडि बेसी सरसात लमजुङ। सम्पर्क फोन नम्बर 0665909999, मोबाइल 98477969229।
3: क्यों भविष्य में चिंता क्यों पारे मोहिंदी आकी वा आगे गई इंश्योरेंस की हम
4: ओहो थदई मरी गा चील मुमई
3: ये भयो समस्या खै विषय पैनिक आगे प्लान तम
4: लौ छैली मु विषय मी नै बिनी छाब बन्दिल परे।
2: रिलायबल लाइफ इंश्योरेंस चिंता आगे समाधान
4: छाबा मी छाबा रोजाई।
5: आमा म पढ्छु नि आए
6: पढेर के हर्छस्
2: अन्नपूर्ण चलचित्र मन्दिर बेसी शहरमा यही साउन 1 गते शुक्रबारदेखि भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र गौथली
7: किन पढ्न आउँछ माया गर्छु भन्नेलाई के भन्छ अंग्रेजीमा
8: बनाना आई लव यू
2: समय मध्याह्न 12 बजे दिउँसो 3 बजे र साँझ 6 बजे।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: मर्सिडीज़ FM 95 मेगाहर्ट्ज़

0: प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक
1: स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री
0: रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन हरू।

0: నానా, మా ఫార్చూని అయి వాడరికి ఆర్చేస్
1: अन्नपूर्णा चलचित्र मन्दिर बेसी शहरमा यही साउन एक गते शुक्रबारदेखि भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र गौथली
2: तिमीले पढ्न आउँछ माया गर्छु भन्नेलाई के भन्छ अंग्रेजीमा बनाना
3: आई लव यू
1: समय मध्याह 12 बजे दिउँसो 3 बजे र साँझ 6 बजे